हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया वसुदेव को।

0: कुटुमकम, सारी वसुधा ही कुटुम है। यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मी वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य स्विदनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only

0: Of course is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me and we'll find a way to get the money and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. Ke dollar?
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagore. Catch me there.
2: Nagore. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या? 84 लाख जोड़ों में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाद्वानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर क्या? जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता है ना महाराज इस संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय है, तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो माधवानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे। ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पश्चंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज विनय के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या? जब परमात्मा की कृपा होगी जो

0: धन्यवाद कीर्तन स्वामी। अब वो क्षण आ गया है जब हम स्वामी जी को सुनेंगे। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी के प्रवचनों से हम आशीर्वाद से हम लाभान्वित होंगे। मैं परम आदरणीय गुरुदेव को वंदना करता हूँ कि वो पधार कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीष प्रदान करें। आदरणीय
1: साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम हमेशा कहते हैं लेकिन कहना चाहिए, जानना चाहिए जब इस विश्व में आना होता है। हमारे आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी, देवपुरी जी और आराध्य भगवान माधवानंद जी, माधवानंद जी आप जानते हैं सभी, आप जानते हो ना? यस, जानते हो? कितना जल्दी में चले भूल गया। स्वामी माधवानंद जी बड़ी खाटू नागौर और राजस्थान, सारा विश्व और यहीं इसी शहर में प्रभु और ये माता जी के पिताजी वो विराज थे। महान ईश्वरीय माधवानंद जी ने सारे विश्व के अंदर सब कुछ दे करके मुझे दिया और मैं जब गुरुजी के यहीं था और मुझे विदेश में चला गया, जब तक मारे तक डरती हूँ हती गुनी, जहाँ तक मैं उस गया उस देश के अंदर, जब गया देखा, लेकिन जो भी है वो सब खाने वाला मांस मदिरा, जो भी देश है अलग, भले ही कोई जो ना आदमी ठीक नहीं खा सके तो वो है नहीं। तो मेरा जाना था मैंने क्या करना है, तो मैं योग का 3-4 देशों के बाद में, क्योंकि योग करते हैं लेकिन मांस खाना चाहिए, मैंने कहा कि नहीं और आपको भी नहीं करूं दूंगा। अगर आप योग करना चाहोगे तो मांस मदिरा दे दो, छोड़ दो और तो मैं दूंगा। तो कोई 2-3 जना ने कहा हाँ, 4 दिनों को हाँ, 1 साल। तो हमारे वेदानंद महाराज योगेश जी, ये मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। तो करते करते आपको क्या कहूँ कि जो जितना हमारे यहाँ इंडिया में, यहाँ पर राजस्थान में जो पहले सब मांस नहीं खाते थे, अब हमारे राजस्थान से आगे जाकर के दूसरे हमारे सब देश के अंदर है, मैंने उन सभी को इतना करा दिया कि मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाएंगे, वो आज हमारे वहाँ ज्यादा है। आपने कहा आप पधारे थे और बाहर काम गए थे, आप गए थे वहाँ जाके, वो भी रहते हाँ सर साहब, तो वैसे जाकर के उनको करने का क्या करना है, एक नंबर वन। नंबर टू, शॉर्ट एंड स्वीट। सुबह उठते हैं आंख खोला नहीं जने, वाह आंख खोला नहीं कठे पर उठ जने, तो एक शब्द को क्या कि मेरी आंख में मानव हूं, मनुष्य मैं एक मनुष्य हूं, उठोगे आगे खोलो पहले उसी समय, हाँ कि मैं मनुष्य हूं बस इतना ही। उसके बाद में पगे नीचे देते हैं तो कहते हैं माँ माता मैं इस पृथ्वी पर पग डोल गई, माता जी हैं, माँ है, दादी है, तो उन्हें तो क्यों, और एक गीपरी माता जी वगैरह गीपरी तो भी माता जी को कहना था कि हे माँ जी, अब माता जी नहीं है लेकिन पृथ्वी माता है, सारे विश्व के अंदर मातृ हम। उसके बाद उठ के जाकर के पानी पीने के, पानी पहले सबसे ज्यादा है, जल जो है जल सो जगदीश, जगदीश जो जग सर्विस जगदीश भगवान जो है, तो अपने अगर देखें एक बार के पानी कितना है तो कितना पानी है?

अच्छा रहेगा सबको। और पृथ्वी वो वगैरह सभी जो है अब रहते हैं सोते हैं, तो वहां पर जानवरों को सोते समय माता पिता को बच्चों को उस कमरे में जानवरों को मत टिकना। और देखिए कि गाय के बछड़े का तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, और एक कुत्ता जो है वो कुत्ता ने लिसेते लेने कुत्ता ने कने सोए ने हुए हाँ हुआ घड़ो बड़ी को अच्छी बात नहीं, कुत्ता भी तो है ही है, लेकिन वो कुत्ते ने जो वो धनी तो बैठे उठे हुए ने वो कुत्ती बने कहते बीच में, या वो भावनी माँ उठे घरे में तो कुत्ते वो लेने जावे। देख लीजिए वो कुत्ता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो तो वहां पर भी उन लोगों का इतना हो रहा है, लेकिन मैंने हम उनको कह दिया कि एक तरफ खिलाओ कराओ सभी, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता है। और उसके बाद में मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो उसकी माँ को बाप को क्या शब्द में बोलते हैं, कहीं कहे मुसलमान कहीं कहे उन्होंने उसकी माँ को उसके बच्चों का जो क्या कहीं कहते हैं उन्होंने हैं तो अब्बा है ना, हाँ तो वो अब्बा है ना, अब्बा तो वो उनके बच्चा बच्चे सब उसका वो करते हैं। वेरी गुड। अब ऑस्ट्रेलियन, अब जो ऑस्ट्रेलियन का कहना हारा मैं तो घर वहीं बैठे ही रहूं, तो वे है तो वो उसका ही ऐसा जो उनके गांव में वो कहते हैं वो करते हैं, तो हाल तक वो वैसा क्या कर रहे हैं। और वेर और दूसरा है तो एक बता दूं कि अपने हिंदू हमारा हिंदुस्तान के, अब हिंदुस्तान के जो है कहीं केवम माँ केवम और कहीं केवम पिताजी कहो टावर हो गए ये कह रहे, अब आपके यहाँ बता दो मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर में मेरे विदेश में जाने से पहले तो अच्छा था, और अब वहाँ से चले तो आप बता दो आपके बच्चों का कहीं के वो आप बोले चोरी भी हो सारा भी हो कहीं कहेगा टाबरे टाबर रखे दो है, और माँ ने कहीं के हमें बाप ने कहीं के वो हमें पता नहीं मन मन तो ठाई को नहीं, मैं तो इतना कोई को नहीं है कि नहीं, तो आपके बच्चे का आपका नाम आपका क्या, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, हमारे भगवान के नहीं है, और वो भी उतना उनका वो वैसा नहीं है, तो क्यों आपके भारत के अंदर हम सब छोड़ दिया। ठीक है कि हम हिंदुस्तानी हैं अटे, लेकिन मेरे विचार में जो कहता हूँ कि आप नहीं रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, आप बोलते हो ना सभी को कौन कौन बोले टावरों ने बच्चों ने, अब इसके पास में करने से मैं क्या करूं, मेरे को विदेशी कहते हैं कि महाराज जी आप ऐसे करते हो ये क्या हो रहा है। अब दूसरा है कि योगा, योगा योगा जो है मेरे योग का जो है कि सारे विश्व के जितने भी हैं वो सभी योगा उसका नाम कराता है, तो ऐसा है कि जो भी हमारे साधु संत जो योगा योग का करते हैं ना, तो कोई उस गुरुजी का उनका नाम उसका कराएंगे, उनके पिताजी का वो गुरुजी का नंबर है, तो हमारे साधुओं का और सभी का उसके पिता का जो भी है वो उन्हीं का नाम देंगे, जैसे माँ उसी के बेटा बेटी का नाम देंगे। अब वो

उसको तो छोड़ दिया। अब जितने योगी हमारे हैं, हमारे योगियों का मेरा, उन सबको कैसा कर दिया कि छोड़ दिया, और इसके अंदर में यहां भी कर दिया कि दो शब्द नहीं करना है कि अभी जो योग वाला काम करेंगे कि दो शब्दों से नहीं करेंगे कि क्या कि मांस और कोई और मदिरा, ये हम नहीं बताएंगे कि नहीं करेंगे। साधु कहते हैं यहाँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन उनको नहीं कहूँगा जो करो या कर मत करो। और मेरे जो योग का कराया है आज तक मेरे पास में मेरे ठाकुर बैठे हैं यहाँ 5 साल तक, उनके बच्चे बच्चे उनके आगे करके उनको सबको अपना हिंदू हमारा बताया है, ऐसा अच्छा बताया, आश्रम बताया है। तो आप ऐसा मत कहना मेरे को, दुख मत कराना मुझे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि योग योगा योगा इन डेली लाइफ, योगा इन डेली लाइफ एंड इस योगा योगा करते समय मांस मदिरा ये सब छोड़ दिलाएंगे, और हमारा भारत जो है तुम्हारा भारत भारत ही है और रहेगा। लेकिन अभी ये जब तक आपने इन बच्चों बच्चों का अभी नाम नाम क्या कर लिया और क्या कराया और कुत्तों को हाथ में लेकर के रह रहे हो तो आई थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ता अच्छा है, बढ़िया है, उसको उनकी जगह रहनी होती है, और आप भी तो एक गाय का बच्चा आता है ना, तो घर में थोड़ी एक लोग एक 5-10 दिन के लिए एक वैसी अपर गाय की बछड़ी है ना, कितनी अच्छी है, गाय की पूजा होती है और कुत्ता की पूजा करती है। तो हमारे भारत के अंदर, क्योंकि देखिए कि आपको कहता हूँ कि जितने विश्व के अंदर में सब कुछ जो हो रहा है, खाना पीना बोलना सब, लेकिन केवल हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म है वो सब कितना प्रार्थना करते हैं, जो ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई साधु संत करते हैं, बहुत वही बस, इसके अलावा और कोई है ही नहीं संसार में, कल कोई नहीं है। हमारे लोग जो गुजरात में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, हमारे इस गांव के घना हमारा बैठे लोग भगे बटे जाओ ऐसा जब वेरे वे काम करे, बहुत करे, पूजा करे हमारे लोग वाले, और जो पहले वो मूसा खाने वाले थे ना वो भी छोड़ दिया कट्ठे अमेरिका में हमारे लोग कि अरे माँ ऐसा, तो वहाँ से छोड़ दिया, कहाँ से, यहाँ से, और वो जो है क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा रहना देना, तो मोदी जी साहब ने बहुत बड़ा कराया है, कर रहे हैं, और उन सभी का इन सभी का वापस सनातन के अंदर में सनातन सत्य सनातन, तो उसी तरह मेरा योग का अंदर मेरे जाने से पर एक एक थोड़ा और कह देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत खराब है, हाँ खराब नहीं सॉरी टाइम कमी है। तो फिर किस क्या किया अभी उस करीब सारी ज़्यादा से ज़्यादा तो अब 20 साल या थोड़ी सी और। तो फिर मेरे पास में मेरे विदेशी लोग जो जा कर के गए कि स्वामी जी ये विदेशी में हमारे यहाँ गायों का वो कह रखते हैं, कैसे रखते हैं और पानी कैसे, और तो 5-6 आदमी आया गायों ने देखा, और अटल तो गाँव में है गाय है ही को नहीं, कुत्ता है ही जगह, तो सॉरी तो वहाँ पर देखो ये बताऊँ आपको, उसमें आपने देख लिया हो और दूसरों को नहीं देखा है, तो वो क्या कि 5-6-7 बार में गए तो वहाँ एक गाय का बच्चा आ रहा है आता है, तो 2 आदमी बैठा कि भाई गाय है और गाय बच्चे निकाल लिया आता है जैसे अपने है, तो वह जो एक बच्चा आयो गाय रो कटाई हो तो वो टोकड़ी नहीं है तो टोकड़ो हो, देख लेना आप इसी को

0: और तो टोकरी है तो वो टोकरा है तो वे हैं दे क्या है ना यूं कुदायो यूं खांचियो एकदम नहीं क्यों गना रहे हैं इसको दियो नहीं करे गाय को बिच्छी गाय हमको दुख बहुत दुख कर रहा है अभी बहुत दुख कर रहा है। तो उसमें क्या किया कि वो लोग बैठे थे तो उसको जा कर के 5-6 आदमी दूसरे हैं ना वो काम करने वाले वो क्या करते हैं कि वो बकरे का गाय का बछड़े को काट करके खाने लग गए। तो उस समय वो सभी मेरे विदेशी लोग थे मेरा नहीं तो उन्होंने कहा कि बाप जी मैं नहीं खाऊंगा नहीं करूंगा तो क्या कि हम कोई जानवरों को नहीं मारेंगे। उन सभी ने कराया कि कोई जानवर का गाय का भैंस का दूध वगैरह नहीं लेंगे गाय का दूध रहेगा गाय का भैंस रहेगा बकरी का बकरी रहेगा कुत्ते का कुत्ता रहेगा वो उनका है लेकिन उसका पानी उनका मत खाओ। तो अभी देख लो मैं करा रहा हूँ और नहीं तो हम मैं तो हाल खा रही हूँ अपना दूध खाऊँ उन्हें अपन है लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे लोग अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिजी कनाडा एवरीथिंग इन माई एवरीवेयर तो वो लोग हैं उसको क्या कहते हैं वेगन का नाम होगा आपके आपके पास में कोई। तो वो क्या है कि गाय का दूध घी मक्खन नहीं खाएंगे मधुमक्खी का वो भी नहीं खाएंगे गाय का उदगा है जो वो है और जो भी जानवरों का है नहीं वो उसका हम जो जानवर जो है जानवर खाने का उनका बच्चा है वो उनका ही है उनके हमें उनका नहीं हम खाएंगे। और क्या खाओगे कि वृक्ष के पास में जो भी है बढ़िया से बढ़िया है हमारे तो केवल इसी को करो। तो आपने देखा नहीं वेगन है ना वेगन तो वेगन उसके अंदर में आपने गांव में अट्ठे भी हैं 3-4 जगह में कटे और ऑस्ट्रेलिया में ना दूर नज़दीक में तो है दूसरे पे है तो वहाँ पर जो विदेशी यूरोप के हैं वो या अमेरिका में रहते हैं इधर रहते हैं वो वेगनर है वेगनर। और जब मैं कहता हूँ आप बोलो आप लगा देना और कह देना कि क्या हुआ है जब हमारे यूरोप से हमारे हमारे भारत के लोग हमारे यहाँ आते हैं और जो दूसरे लोग वो भी यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाने के लिए कहते हैं और वो वेगन वाला वो है नहीं वो कहते कि नहीं नहीं हमारे पास मांस नहीं हमारे को दो वेगन देख लो आप मेरे साथ चलो मैं दे दूंगा बता दूंगा उसी दिन। इतना वो सभी मांस मदिरा सब छोड़ा दिया जानवरों को मधुमक्खियों को और सभी और वो करके आते हैं और हमारे यहाँ जैसे आए तो बोले गड़ा है और एरोप्लेन में बैठते हैं ना अरे कम से कम जाते खाओ मांस और कहीं है यस यस मेरे साथ चलो आप देख लेना क्या होता है। तो वो करने से मेरे को सभी क्या उन लोगों ने भी कि महाराज जी महेश्वर जी आपने क्या करा दिया और क्या करा रहे हो मैं जो कहीं नहीं हमारा गांव है मेरा देश है उसको थोड़ा वापस लाना है हमारी माँ है नहीं वो माँ रहेगी बेटा रहेगा सब रहेगा मांस मदिरा नहीं कराएगा। तो प्रार्थना करो तो शाम को बच्चे को उठ करके आपको बच्चों को उठ करके प्रणाम ना करें मंदिर में जाके बैठे सभी करें गणे करो नहीं बहुत ऐसी बात नहीं है खूब करते लेकिन खूब बार रहता ही है। तो इसीलिए योगा इन डेली लाइफ तो योगा इन डेली लाइफ का मतलब सारे विश्व के अंदर सारे विश्व में। और अगर मेरा कहेंगे कि योगा इन डेली लाइफ तो कहें कौन है कहाँ से है कि आपका हिंदुस्तान का आपका है कि वो है तो मैं तो कहूँगा आपका हिंदू हिंदुस्तान का है, हम करेंगे करेंगे, तो मेरे करेंगे, मेरे को दे देंगे नहीं। इसलिए मैंने सभी को करके के योगा इन डेली लाइफ, एवरी डे प्रैक्टिस योगा, एवरी डे प्रैक्टिस योगा, जैसे करना। अब ऐसा ही भी देख, अगर वो योगा इन डेली लाइफ वाले लेकर है तब तो आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। और दूसरे क्या कि वो कोई आता है 5-10-20 हटे आवे, दो 30 दिन फिर आवे, कोई तीसरा पर जाए, आगे कठू आ जाए, तो वो ये अभी मैं देख रहा हूँ, आई नो दैट। बट ये महाराज जी है ना, भाई जी, इनके अच्छा चल करा है, इन्होंने किया है, बहुत अच्छा करा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा लोग नहीं आवे, नहीं जैसे कोई करे दूजों ने वंदन घुमा गाल दे। लेकिन मेरे अगर वो कोई आता है, अरे टाबर अटारो है, देखे 10 साल की वट देखा बन जाओ किताब। तो इसी प्रकार मेरा यही है कि योगा इन डेली लाइफ, सारे विश्व के अंदर भगवान के पास में और जानवर की रक्षा करें, हमारे भारत की रक्षा करें, हमारी भारत की रक्षा करें। तो हमारे जानवर, हमारे माता पिता है, बच्चे हैं, वो जानवर वालों का अंदर मत चुलाओ। और उनको बच्चे हैं वो इना उनको करा दो, वो करो कोई मत करो, लेकिन वो एक घर के मार्ग में सामने सो करके कुत्तों के और कुत्तों के बकरी के वास में, या फिर एक बिल्ली है, थी बिल्ली भी तो खूब होती है, तो वो है उनके लिए दो। लेकिन एक घर के अंदर में जो है वहाँ नहीं जाना देना चाहिए। बोल श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवाधिदेव देवपुरी श्री महादेव की जय। माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। हमारी भारत, हमारी भारत, हमारी भारत।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरु जी महाराज की
2: जय। He has established Vishnu Guru Deep Ashram Shodh Sansthan. He is working hard to bring to light the unpublished work of great Sanskrit scholar Pandit Madhusudan Ocha. Now, I humbly request Mahamandaleshwar ji to propose a vote of thanks.
3: Thank you. पहले मैं हमारे प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी को बुलाता हूँ थोड़ा 2 साल का। एक मिनट।
4: क्योंकि बात ही जब मंचस्थ विश्वगुरु स्वामी महाराज और उनके वट वृक्ष के नीचे बैठे सब लोग सामने विराजमान देवी देवताओं, मेरे को चूँकि बड़ा टाइट प्रोग्राम था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कल अकस्मात मैं फेसबुक पे बैठ गया और मेरे हजार सैकड़ों मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया था कि भाई मोबाइल टेलीफोन संस्कृति सारे विश्व को छा रही है, कब तक चलेगी? मैंने कहा नहीं चलेगी, एक तो मेरा उत्तर ही ये भी ऐसे समाप्त हो जाएगी कि सारी दुनिया बहुत चक्की रहेगी। नंबर 2 कि अभी जब तक चल रही तब तक हम लोग हेलो का हेलो हेलो करते हैं, जिसका अल्टरनेटिव बताइए। मैंने कहा कम से कम भारतीय और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उसका अल्टरनेटिव मिलता है, ओम कृपा करके ओम बोलिए जब सब जब भी टेलीफोन को उठाएँ या बात करें। नमस्कार, धन्यवाद।
3: अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबको तो इंग्लिश तो आती है, इसलिए हमारे विदेशियों भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश में बात करूँगा। सो आई वुड लाइक फर्स्ट टू थैंक टू आवर गुरुदेव विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, हु इज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ योगा इन डेली लाइफ इंटरनेशनल Sri Swami Madhavanand World Peace Council and many other societies, NGOs around the world. So Swami

0: Apex University to kindly convey our heartfelt gratitude to Maharaj Ji and all eminent scholars present here.
1: परम पूजनीय आदरणीय स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज साहब, अपेक्स यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पधारने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आपके द्वारा योगा इन डेली लाइफ, पीस, हार्मनी, वेजिटेरियन के लिए जो भी प्रोग्राम पूरे विश्व के लगभग 3 से 4 हज़ार सेंटर में जो चलाए जा रहे हैं, वो वास्तव में अपने आप में हमारे लिए एक प्रेरणादायी है। आप यहाँ पधारे, आपने हमें यहाँ पधार के हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, थैंक यू।
0: नाउ दैट टुडेज सेरेमनी कम्स टू इट्स कंक्लूजन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रोसीड फॉर प्रसाद एंड रिफ्रेशमेंट्स outside the auditorium. Thank you very much.
2: Kalyan Kalyan Mantra ke sath hum isko samapan karenge. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu nirogina.

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: बोल दे मैं एक आदू बोल दे फिर जा
2: बताओ थे
0: बोल ले
2: नहीं हाँ बोल ले
1: ठीक है।

0: नींद का जड़ा जाए
1: नींद तो बेम कर
0: फिर थोड़ी काटी है महाराज काट गया
1: है ये मैं
0: और दो वो
2: चलो आवाज बोलो साहब।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरुदेव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय हो।

0: दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमानंद स्वामी श्री महेश्वर सतगुरु देव की
1: जय। ईश्वर मंगाओ लोग ये गावल महाराज जी ने

0: 뭐지? 뭐지? 얘뭐 예,
1: पांच बज गया मंगेश्वर जी नमो नारायण
0: देवेश्वर महादेव की
1: जय। आकाश टाइम हो गया।

0: आज बदले में निशान
1: दोए इस चादर में दर्द हो रहा है यार
0: आज बदले में निशान दोए
1: आने के टाइम यार आंगन से काम मन कर रहे दर्द हो रहे ने दो नहीं मिली रे

0: ओम बोले श्री भगवान देवकृष्ण महादेव की जय।
1: आ जा
2: रहा हूँ।
1: बोलो
2: तो क्या बोलो। अरे बोलो। एक ही टाइम में आप एक ही

ही रहे सुखी आरी रे, ओम की रचना सारी रे, ओम की रचना सारी रे। एवरीथिंग ऑल व्हाट इज विजिबल अनविजिबल हियरिंग टेस्टिंग फीलिंग ऑल दिस इज ओनली फ्रॉम वन फ्रॉम द ओम द साउंड। ओम इज द क्रिएटर, ओम इज द होल यूनिवर्स द साउंड दैट हैज ओम हैज नथिंग नो फॉर्म टू सी निराकार निराकार हैज नो आकार। ज्ञानी जाने भेद सोही रहे सुखी आरी रे। दोज वाइज पीपुल हैव अंडरस्टूड द ओम देर विल बी ऑलवेज हैप्पी सुखी बिकॉज दे विल नो वाट इज द ओम। ओमकार पर ब्रह्म रूप है ओमकार। इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ इज द फॉर्म ऑफ द ओम देन इट इज द ब्रह्म ऑनली ब्रह्म इट हैज नो फॉर्म नथिंग इंटायर यूनिवर्स ऑल द हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट ब्रह्म। यू कैन से डिफरेंट नेम इफ यू वॉन्ट टू से इट इन क्रिश्चियनिटी यू कैन से द होली फादर आई डोंट नो इफ इट इज दैट मुस्लिम से इट हाइएस्ट हाइएस्ट इज अल्लाह नथिंग इज एल्स या सो द गांधी रॉट वन वेरी नाइस सॉन्ग ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर एंड अल्लाह इज दाय नेम ओ लॉर्ड गिव गुड थॉट्स टू एवरी बॉडी। हु से दैट गांधी जी। ओम की छाया नहीं धूप है ओमकार सब रूप सदा ही। ओमकार हैव नो शैडो। इफ यू सी द शैडो then from whom is the shadow? Therefore it is a no shadow. So Omkar have no nahi chhaya nahi dhoop hai neither the sun no light because light should be from someone. So that is a nirakar. So neither the shadow neither सनलाइट। ओमकार नभ रूप सदा ही एंड ओमकार नभ रूप सदा ही। नभ इज द स्काई दैट इज द ओम ऑल द टाइम्स ओनली ए वेरी क्लियर स्काई ओनली नो ऑब्स्टिकल देयर इज नो एनी Even the clouds are nothing. Pure Nabarupa. That's called Nabarupa. What is your form? What is your Atma? My Atma is in Nabarupa. Just like all. And where will you? How big are you? What is your color? Go into the Nabha and you will see endless and endless this Atma. Rosumis, understand? No. Who did not understand? What is a Nabha? Sky. Empty sky, everything. That is thy Atma, thyself. That is the Om. Om.

निराकार नव रूप सदा ही है निराधारी रे. दैट वन ओम इज नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग. इट इज नॉट दैट वी आर सिटिंग ऑन द अर्थ, बट ओमकार हैज नो एनी बेस. इट इज एवरीवेयर इक्वल एंड सेम. ऑल इज एग्जिस्टिंग इन दैट, बट ही इज इन नो वंस. So is he with all and no one is all. Om, Om, Om. Om kar ki trigun maya. Om kar ki trigun maya. There are three gunas. Which one? Sattva, Rajas and Tamas. So, ओमकार की त्रिगुण माया, दिस इज अ माया ऑफ द ओमकारा, बिकॉज इन दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो बट ऑल्सो इज अ यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट होल्ड, यू कैन नॉट. सो सत्वा, राजस एंड तामस, दिस ऑल इंटरिंग इन अवर बॉडी. Then you will see how what it is happening. ओमकार में जीव रहे सब ओमकार ओमकार में जीव रहे सब देहधारी रे. In that ओमकार living all the soul, all jivas and all who have body, they are in the Om. Evening we will do continually, okay? So, again, come to the Brahmari. How many times? 15. Okay? Without movements. No movements. Deep inhale, not moving.

0: राधे भगवान श्री नरेन महाप्रभु जी
1: की जय हो।
0: श्री सियालकपुरी जी महादेवा की जय। श्री सिद्धपुरी जी महादेवा की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
2: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।

सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ओम शांति शांति शांति ओम। ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म

0: परमादरणीय, परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandleshwar ji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Swami Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: Aur mujhe aisa lag raha hai कि स्वामी जी की ये साधना, ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी, आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या, दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य, इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
2: And third is the satsang with the great saints.
0: हम इस बात को मानते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता।
2: We believe that human life is not available all the time.
0: मनुष्य जीवन में दो विशेषताएं हैं, एक तो हमें परमात्मा ने जैसी बुद्धि दी है, मनुष्य को वैसी बुद्धि किसी और प्राणी के पास नहीं है।
2: There are two things important in human form. One is the intellect which no other living beings have.
0: और दूसरा हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
2: एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर थिंग्स, व्हाटएवर कर्मस वी वांट टू डू। सो इंटेलेक्ट एंड कर्मस आर समथिंग स्पेशली मेड फॉर ह्यूमंस।
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
2: वी गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टू डू गुड इन दिस टाइम।
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति ही। जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुँच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
2: इन वेदस इट सेज that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया.
2: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwa Guruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है. वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु.

गोपाल महोत्सवादि सकलै रावेष्टितं सुन्दरम् रासकीर्णन तत्परं हरिहर

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्ते यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरती, पकड़।
1: So this is like when Vishwaguruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: गुरुजी ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: So whatever the Vishwaguruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain,
1: this is called dhirti,
0: shama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्ते यम प्राइमरी में है किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा।
1: द थर्ड स्टेप इज नू नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं Excuse me, veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मनी शुद्ध नहीं होता।
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृतिक्षमा दमयस्तेयम शोचम मिंद्रिय निग्रहा। हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें, ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए।
1: So we should eat, drink, think, listen, or whatever we do should be in a such a way that our life grows, that we are going upwards in the upper trajectory.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा व्यवहार शुद्ध होगा आहार शुद्ध हो सत्वशुद्धि तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे पकड़ सकोगे कैच कर सकोगे
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says, if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhir vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam Dhir vidya buddhi mind isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए थी बनी बुद्धि और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है धीमनी बुद्धि है माइंड ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड It should be pure and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे उलझावे नहीं सा विद्या या विमुक्त ही जो आपको उलझावे नहीं सुलझावे उसका नाम है विद्या
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू नॉट व्हाट बाइंड्स यू व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड व्हाट मेक्स यू फ्री
0: आप उलझे नहीं हैं इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं राग नहीं द्वेष नहीं क्रोध नहीं काम नहीं ईर्ष्या नहीं ममता नहीं और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है सत्यम बदो धर्मम चरो सत्य बोलो धर्म का आचरण करो
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So your the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है जो उसके घर से साधना शुरू होती है
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा अलग नहीं है. एक ही रोड के अलग अलग नाम.
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling gyan, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam, Brindavan.
2: He's telling the map of India.
0: एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत, बम्बई सूरत रोड नाम हो गया. और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता.
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत, दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड. व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना.
1: So in the yoga there are 8 books in which you have to study and then pass.
0: यम नियम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक. यम, यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान, अपने को नियमित करना, उस पुस्तक का नाम है नियम.
1: The book which tells us how to control ourselves is called नियम.
0: नियम, यम अपने को रोकना.
1: यम is the book which tells us how to stop ourselves.
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित वृत्ति निरोधा, वो नियम हो गया.
1: So नियम is this first line that when your thinking stops, when your
0: नियम means कानून को पास पालन करना, उसको धारण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना.
1: To follow the laws and rules to put it in your life, this is called नियम.
0: यम नियम के बाद में आसन है.
1: After that is yasana.
0: बॉडी को सेट करना, बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, हमारी बॉडी ईयर से चल रही है, उस ईयर को शुद्ध रखना, इसका नाम है प्राणायाम.
1: So
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना, ये है आसन.
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन. And the fourth book about pranayama and how to control the air and use it for the purification.
0: आसन से आपकी बॉडी शुद्ध होती है और इसी प्रकार से प्राणायाम से आपके अंदर 5 ईयर है, वो 5 ईयर शुद्ध होके और ठीक से डिलीवरी सर्विस करती है आपकी बॉडी के लिए सामान की, मटेरियल की, सामान की.
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी, मेक इट क्लीन, द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणास, 5 टाइप्स ऑफ एयर, which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रतिहार आता. प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रतिहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते हैं.
1: सो प्रत्याहार इज टू विथड्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो नाउडेज इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा, इट्स ओनली मेंशनिंग जस्ट आसनस एंड प्राणायामस व्हाट इज गुड फॉर द बॉडी. But yama and yama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: आसन प्राणायाम के बाद प्रतिहार होना चाहिए, लेकिन आज के योगी जो है व्यापार शुरू कर देते.
1: So after the asana and pranayama, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: ये मेरा टूथपेस्ट है, ये मेरा ब्रश है, ये मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई.
1: So this is my toothpaste, this is my skin cleaner.
0: ये मेरा चमनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है. तो प्रतिहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया.
1: So
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है.
1: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: Guruji, ye baitha na.
3: Baba Ramdev ji.
0: Kaha? Aja wo. Hamara chela hai wo. Unko pata hai sabko. To usme ye hai. Ab iske baad mein hota hai dharana. Dharana, jo swayam ka judgment hai, swayam ki swikriti hai. स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं.
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन.
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं. ये मेरा संगीत वाला है. धारणा किसको बोलते हैं, ये मेरा संगीत वाला. ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा,
1: मींस धारणा
2: नहीं
0: लेगा, नो धारणा.
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन. सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू कीप संन्यासा. सो ही सेड नो थैंक यू.
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं.
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this samsara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो. So, तुम भी संन्यास ले लो. उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो.
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi. You also take your 21 generations across this world. I said, no, no, no, no, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है.
1: सो डिजायर्स इन दिस लाइफ दे आर नॉट फुलफिल्ड फॉर दिस पर्सन एंड हिज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड डेडिकेशन इज नॉट देयर.
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है. ध्यान में जो है ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया.
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है. लेकिन ध्यान का ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए.
1: So like this now, this meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business, but before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: So if I tell you please take the money from me and then I give you 5, 10, 20, 50, 100 or 500 rupees, which one you will take?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का.
1: From all of this you will take 500
0: का, ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे. 200 का नहीं. कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो.
1: Now we are like.
0: Again hand, yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती.
1: So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्तोपि दुखेना गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता.
1: There is a
0: family. क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते.
1: समाधि इज व्हेन यू feel only yourself, there is no connection with your body, there is no connection with this world, you have connection only with yourself.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में ध्यान शिक्षण में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प एक निर्विकल्प.
1: There are two types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: सविकल्प समाधि उसको कहते हैं जहां पर साधक पक्का है और उसको ऊपर उठाने का साधन भी सच्चा है और जहां की उसका गॉड जो उसको पाना है वो भी उसकी समझ में है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है जहां पर न तो शिष्य रहता है न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि.
1: So in Nirvikalpa there is neither disciple, there is no guru, they both merge into the God, aham brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं. 9
1: In the course of bhakti there are 9 books.
0: 9 पुस्तकें. बात सुनना तो केवल विश्व गुरु जी की सुनना, बाकी को सबको इग्नोर कर लेना, नहीं हमने सुनना चाहते.
1: So first
0: श्रवण भक्ति.
1: So first is listening, so listen only what Vishwa Guruji says, nothing else.
0: अंदर से याद करो तो only विश्व गुरु जी को याद करो, दूसरे को याद नहीं करो, ये कीर्तन है.
1: Kirtan or remembering is that you remember only the words of Vishwa Guruji, nothing else.
0: याद करो तो एकमात्र गुरु और गोविंद को याद करो, दूसरे को नहीं, ये स्मरण भक्ति है.
1: Remembering the smaran bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
0: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
1: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
0: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की. दूसरे की, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
1: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
0: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
1: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next
0: Dasya, Sevak, Shishya, usko Dasya Bhakti kaha gaya hai.
1: Next one is serving, to serve the

0: guru and god.
1: Dash apna apna istitva, apna mahatva, apna ahem akar prakar swarup mita karke guru mein samahit ho jana unki seva mein usko das bolte hain.
0: Das or servant is when you renounce all of your I or of your egoism and then you dedicate your life to the service of the guru.
1: Jab aapka man shuddh ho jata hai aur guru gobind ko vishwas ho jata hai to us samay par god bhagwan guru aapko apna mante hain aur aapke sath mitrata ka virodh व्यवहार करते हैं उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
0: Sakha bhakti is the next step, is when you believe and trust your guru so much that he also can become like your friend.
1: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नजदीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास ने रहने दिया, सेवक ने रहने दिया, उनको सखा बना दिया, सखा मित्र, फ्रेंड.
0: When Arjun was with Krishna, he didn't. After some time, he stopped being his servant. He stopped being his sevak. He became his friend.
1: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो, महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबहेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
0: आत्मनिवेदन इज व्हेन यू से आई एम गोइंग विद यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो विद यू व्हेरेवर यू वांट.
1: वो आत्मनिवेदन है. आत्मनि हमारा ये निवेदन है कि हम आपके यहाँ एडमिशन चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, और अब हम उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस कंडीशन में हमारे गोविंद रहते हैं, गॉड रहते हैं.
0: सो इट्स रिक्वेस्ट ऑफ द सोल दैट आई वांट टू लिव इन दैट कंडीशन, आई वांट टू लिव इन सच अ वे लाइक अ गॉड इज लिविंग.
1: इसके बाद में फाइनल एमए की परीक्षा होती है एक ही आदमी के लिए. वो क्या है? ज्ञान की भूमिका.
0: So the MA, the master degree, is the index of knowledge. It's the last one, or introduction to knowledge.
1: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
0: Seven books.
1: उसमें पहली books क्या है? सुभिच्छा. क्या है भैया? सुभिच्छा. सुभिच्छा क्या है? बोलो गुरुजी. अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम कहाँ मना.
0: फर्स्ट बुक इज स्वइच्छा और द ओन डिजायर एंड यू से गुरुदेव आई वांट टू लिव विद यू.
1: अच्छा अब आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं. अच्छा अब बोलो गुरुजी.
0: गुरुजी
1: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
0: द सेकंड वन इज ओ गुरुजी आई थिंक द सेम लाइक यू एंड गुरुजी सेज ओके देन टेक संन्यास.
1: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
0: विचारणा.
1: उसको विचारणा बोलते हैं.
0: विचारणा मींस थिंकिंग. इट्स लाइक व्हेन योर थॉट्स एंड गुरुस थॉट्स आर इक्वल, यू आर थिंकिंग लाइक योर गुरु.
1: तन मानसा. इसके बाद में जो है पुस्तक है तन मानसा. गुरु से जब विचार मिलता है तो जैसे बड़ी टंकी में से पाइप में से पानी आकर घर की छोटी टंकी में आने लगता है, ऐसे ही गुरु का ज्ञान शिष्य में आने लगता है, इसलिए उसको तन मानसा बोलते हैं, यानी कनेक्शन, बड़ी टंकी से छोटी टंकी में कनेक्शन.
0: सो द नेक्स्ट वन इज तन मानसा, व्हेन द गुरु, द नॉलेज ऑफ द गुरु स्लोली स्टार्ट्स टू बी ट्रांसफर टू द स्मॉल पॉट ऑफ शिष्य ऑफ डिसिपल.
1: सत्वापत्ति. अब चतुर्थी जो है ज्ञान भूमि सुविच्छा स्यात, प्रथमा समुदायता विचारणा, द्वितीय स्यात तृतीय तनुमानुसा, सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात, पंचम संस्यात्मका पदार्थ भावनी षष्ठी, सप्तमी त्रियगाश्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते.
0: सत्वापत्ति इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इन गुरु एंड डिसिपल देयर इज नो डिफरेंस इन देयर थिंकिंग एंड एवरीथिंग.
1: पदार्था भावनी कहते हैं, पदार्था भावनी, जैसे आपको चाय याद ही नहीं आवे, कॉफी याद ही नहीं आवे, चटनी याद ही नहीं आवे, रसगुल्ला याद ही नहीं आवे, आइसक्रीम, फिर 15-15 इंजेक्शन.
0: सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू इवन डोंट रिमेम्बर, यू नो, नाइदर एनी स्वीट्स और एनीथिंग, एनी फूड यू लाइक, देयर इज नथिंग देयर.
1: पदार्थाभावनी का अर्थ यह है कि आपके सामने स्टोन हो और आपके पास में जो है गोल्ड हो, इस दोनों को आप बराबर समझे, इसको पदार्थ अभाव नहीं बोलते.
0: पदार्थ अभाव, द डिटैचमेंट फ्रॉम द एनीथिंग इज लाइक यू कैन हैव अ स्टोन और यू कैन हैव अ गोल्ड, फॉर यू दिस इज इक्वल.
1: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
0: असंशक्ति इज व्हेन यू डोंट थिंक एंड देन यू गो बैक टू योर फैमिली, टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन.
1: अब तो हमारा एक ही नारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा.
0: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
1: पदार्था भावनी, जहां सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
0: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
1: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था, परीक्षित को तक्षक काटेगा, और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके, लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा, ईयर वो क्या ना बोलते उसको,
0: सांप, सांप, स्नेक,
1: स्नेक, वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
0: सो लाइक इन द इन भागवत देयर इज दिस कर्स ऑफ किंग.
1: इसको पदार्था भावनी बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो, डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्ति आपो, न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता, पवन नहीं उड़ा सकता, पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है, हवा आपको उड़ा नहीं सकती है, ऐसा आपका स्वरूप है. उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं, उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
0: So this is that book, Padartha Bhav, the There is no fear of snakes, there is no fear of death, there is no fear that the fire will burn you, you will drown in the water, that anything will happen with any element. So this is the highest form.
1: Duriya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho aur aapki uske prati koi आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
0: And then afterwards is turiya avastha, the place or the mind state when you have anything around you and then you don't want to do any work in that, it doesn't attract
1: you at all. इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरुजी से, इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की, वर्क की, वो हमने सफल कर दिया.
0: सो इन आवर लाइव्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did, and then whatever you invented in us, whatever you effort you put in us, it was successful. So we passed all these exams. This acharya ji is telling to us that we should success, we passed, and we should successfully pass all Vishwa Guruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
1: Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti.
0: Chidip Narayan Bhagwan Ki Jai. Devadi Dev Deveshwar Mahadeva Ki Jai. Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan Ki Jai. Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj Ki Jai.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, देवाधिदेव श्री श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय, आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय, श्री हिंदू धर्म साम्राज्य श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देव की जय, विश्वगुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री विश्वर महादेव की जय, श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय, विश्वगुरु श्री स्वामी महेश्वर।

श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की गंगा मैया की।